पत शेती घर जाओ। इना अमोलक हीरिया लाला तो महंगे श्वासा दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा तां तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउना सफल हो जावेगा। जिस कारज लई मालक ने तेनू घल्या है उदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पाके तू जाके बह जावेगा।

नाम रूपी अमृत पीता है। ओह ही सुचे रहे हम सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा। ते जे सिमरन नहीं कीता विकारा विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा। किसे मारे पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया।

संतान गुरु नानक पातशाह बैठे हैं एक सरोवर के किनारे ते। ये सुकाल सरोवर है, जिस सरोवर ते काई आ जाती है कवल फुल पैदा होते हैं। ऐसे सरोवर के किनारे ते बैठे सन ते की तकिया, पवरा आके बैठा कमल फुल ते, कैसा रस लै रहे ते घूं घूं कर रहे है, कदे उस फुल ते बैठदा है कदे उस ते बैठदा है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने की तकिया, जदों सूरज अस्त हो गया रात पैण लगी, ये पवरा बैठा सी कमल फुल ते, कमल फुल बंद हो गया ते विचे ही इसकी मौत हो गई, अंत हो गया। धन गुरु नानक पातशाह ये नजारा वेख के कहन लगे, ऐ भवरे रूपी मेरे मन, तू ही तो संसार विच एवें खचित होया, तू ही तो धन दौलत पदार्थां दा लोभी है, आवेख जिवें भौरे ने लोभ कीता है विच ही मर गया, तू ही संसार विच एवें चला जाएगा। परमेश्वर दे नाम दा लोभ कर जे करना, परमेश्वर दे सिमरन दा लोभ कर भाई जे करना। तां गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द उचारण कीता, पवरा फूल भवंत्या दुख अत भारी राम, तू पौंदा रहे वासना दा लोभी तू फिरदा ही रहा। इसे तरह साड़ी अवस्था है, असी भी संसार विच आके पौ रहे हां, अपने तंदियां विच भज रहे हां, सवेर तो शाम तक सानू परमेश्वर दा नाम नहीं चेते आउंदा, यही चेते है कि उत्थे चले जाइए, आदर कर लईए, ओ कर लईए, कोई पदार्थ प्राप्त हो जाए, किते धन दौलत दा नफा हो जावे, बस यही साड़ी दुनिया दी पैसे दी दौड़ है, जिस दौड़दियां दौड़दियां मनुख एक दिन तय पैंदा है, मिट्टी दी देरी हो जाता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी मेहर कर रहे हैं, कह रहे हैं, पवरा फूल भवंत्या दुख अत भारी राम, मैं गुर पूछया अपना साचा विचारी राम, विचार सतगुर मुझे पूछया पवर बेली रातो, सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल तावन तातो, जब जम जग बाधा खाए चोट, क्योंकि जपया नहीं तंदियां में रुझा रहा, हुन जम ने आके पकड़ लिया, ते फिर जम का डंड मूंड में लागे, कहत कबीर तब ही नर जागे। हुन जाग आई, हुन होश आई कि कितने अमोलक श्वास में तंदियां में उजाड़ के आ गया। इसलिए जम मग बाधा जिले जम ने बन लिया खाए चोटा, फिर सजा मिली कोरड़ियां दी शब्द बिन बेता लिया। गुरु की बाणी नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नानक साहब जी मेहर कर रहे हैं, कह रहे हैं, सच कहे नानक चेत रे मन, मैं तेन सच कह रहा कि सिमरन कर, जे अपना उधार चाहना है, अपना भला चाहना है, संसार ते आउना सफला चाहना है, ता सत संगत च बह के जप श्री वाहेगुरु। सच कहे नानक चेत रे मन, मवरे मरे पवरा का देखा, वो कई नहीं ते संसारी तंदिया में एवं ही मर जाएगा। जाग साड़ी सुती हुई सुरत नु जगा रहे हैं गुरु नानक साहब जी के विसर गया।

लोभी पुरुष पदार्थां विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां नूं पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन भी बड़ा करना कि मैं बड़ा भगत ज्ञानी हां, क्योंकि हजूर दा वचन है जो जाने हों भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाने हो कथनी करता व्यापारी बसुधा ज्यो बसता, साध संग जिन हो मैं मारी नानक तांकू मिले मुरारी। भई रब दी प्राप्ति तो उन्हां नूं ही होंदी है जो निम्रता दे नाल निष्कामता दे नाल मन करके परमेश्वर दी भगती करदे हन। ये लोकां नूं पत्याउण वास्ते विखाउण वास्ते बड़ियां मालां फेरदा है, बड़े सिमरन करदा है, बड़ियां बगल समाधां ला बैंदा है। ते बाबा फरीद जी कहंदे हन कि ये भगती भाई परवान नहीं, उसदे इस पखंड नूं देख के ता फरीद जी ने यह शलोक उचारण किया, फरीदा जां लब ता नेहो क्या, जिथे लोभ है उथे नेहो क्या, उथे परमेश्वर दा प्यार की होना है, नेह की होना है, उथे ता केवल माया दा ही प्यार है। लब ता कूड़ा नेहो किचड़ घत लंघाइए, छप्पर टुटे मेहो। हे भाई जे पदार्थां दा लोभ है तां प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा है, जे खुदा दा नेहो प्यार है तां पदार्थां दा लब करना तां फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तां लोभ नहीं, जे लोभ है तां प्रेम नहीं। इसलिए भाई जे प्यार करना है ता सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल, ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भेजना जावे तो फिर तेरा प्यार कादा होया तां फरीद जी कहंदे आ ना गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तां भिजे कंबली रहा तां टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो एवी तां उहदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उहदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इथे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे

एक रजोगुणी पुरुष जो फरीद जी दे पास आया, मथा टेकिया ते मथा टेकन लग्या ओ पूरी तरह ना चुकिया, भई मते पग ना मैली हो जावे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। तब बाबा फरीद जी कहंदे न, भई वेखो इसनू पुलावा पग दा है, भई मते पग मैली ना हो जावे मथा टेकन लग्या। पर इस अणहोल पुरुष नू ए नहीं पता भई एक दिन ए सिर भी जिस सिर ते पगड़ी बनी है इस सिर नू भी मिट्टी ने ही खा जाना है। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु।

ये ताहिर दा नहीं, जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी। आख्या ओ हिरदा, ओ हिरदा तां शमशान भूमिका है, उस हिरदे विच तां भूत प्रेत वस रहे हन, जिथे साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी। जेड़ा सिर गुरु दे अगे नहीं झुकिया, ओ सिर कादा होया, जो सिर साईं नानवे सो सिर दीजे डार। आख्या नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं, सो पिंजर ले जार। ऐसे हिरदे नू जला दे, ऐसे शरीर नू छड़ के सुआ कर दे, जिस शरीर विच वाहिगुरु दे मिलन दी सिक नहीं आवसी। क्योंकि ए सुल्तान भगती है बैराग, मालक दे याद विच जुड़ के भजन विच जुड़ना, सिमरन करना, ए सुल्तान।

के काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुकम अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन करदे हन, मैं तो अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे तां मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं जंगलां विच, असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर

उड़भो न कादा कारे, देख मिली जे अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उचारण कीता होया

अगर आप सारे मैं पिछले कीर्तनच भी किया है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हां शब्दां दे नाल अपनी आत्मक अवस्था नु उच्चा करन दी कोशिश करिए। इन्हां शब्दां तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी दे सामने अज दे इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हां जिस शीशे दे विच असी अपने आप नु देख सकी। मैं आप जी दे सामने साडे सतगुरुआं दी जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड ओ रख रहा हां ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी किहो जहे हां अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिन्ने हां उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हां अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

इस दे विच भी गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वह हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उसके अंदर हौके हुंदे हैं, तो उसके अंदर की इंतजार हुंदी है, उडीनी यानी उड़ीक, उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री, कदों वो प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है। अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने यह भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां किन्ना सावी तोल तन जराई अपने लहां सो सज्जन टोल। कहिंदे इंतजार तमन्ना इतनी बढ़ गई है कि अगर किते मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सका तो कहिंदे मैं ए भी करन नू तैयार हां। खंभ विकंदड़े जेल हां किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। तो हुण तक मैं जितनिया भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच यह पेश कीता है, यह आप जी दे सामने रख्या है कि गुरु साहब एक खास किस्म दी अवस्था एक खास किस्म दा ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही भागशील लोगों ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उस नू साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जा आप जी दे सामने मैं रखना चाहना हाँ जिस दे विचों सानू गुरु साहब

अखीरली लाइन दे विच कबीर जी ने शब्द नु कंक्लूड किया है वह कहना बहुत जरूरी है। कहते हैं कहे कबीर जीवन पद कारण, जीवन पद का भाव कि जीवन की असल मंजिल, असल पदवी, असल रुतबा। कबीर साहब कहते हैं ऐ इंसान अगर तू जीवन का असल रुतबा करना है, हासिल करना है तो की कर, हर की भगत करी जाए। बस अपनी जिंदगी दे विच भक्ति की अमीरी लाओ, भक्ति ना होवे तो जिंदगी बड़ी गरीब रहती है, भक्ति दे नाल ही साडा जो जीवन अमीर बनता है। कहते हैं

चित्त आनंद पूर्ण परि परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाहे खूबा हस्ती मुकदस ला इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तो अलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दिते सानू। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी बाणी दे बारे दसन हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शास्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शास्त्रां नूं भगवती नूं खग नूं नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उच्चारण कर दे विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगं नम खग अदंगं अपेंग अपंगं गदांग गृष्टम नहो समो सहथियं जिने तुलियंग वीर दियो ना दियो। सतगुरु पातशाह जी दा आओ शास्त्रनामा बड़े प्यार नाल श्रवण करो। ये राग जो आप जी श्रवण कर लगे हो कोशिश करांगे राग ये जिस तरह के आप जी सारे जानते हो पंथ प्रसिद्ध जथा सत्कार योग अति सत्कार योग भाई साहब भाई दलबाग सिंह जी गुरबाग सिंह जी जो पंथ दे रतन हैं पंथ दे हीरे ने तो सत्संग जी वह भी बैठे ने तो अमरीक सिंह जी जख्मी साहब जी कीर्तन करके गए ने। तो आओ ये राग जो आप जी के सन्मुख रखन लगे हैं ये राग जिस तरह के औडव जाति छाडव जाति संपूर्ण जाति तीन जातियां दे राग मन्ने जाते हैं पर चतस्वरी जाति चार सुर दा राग है। इसका नाम भवानी राग है मां ते सा इसका वादी है बिलावल थाड़ दा ये राग है। तो आओ बड़े प्यार गा पा नी ये वर्जित करके

बोलते हां तैनू दूर समझिया ताई तां ए अनर्थ करदे हां। रतन त्याग कौडी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होमन सो दूर पराने। ए साडा जीवन है पर तू तो सब कुछ वेख रहे हैं इसलिए जिस तरह असी बख्शे जाते हां सानू बख्श लै असी मंदे चंगे जेहो जे भी हां हे निरंकार असी रुड़े जा रहे हां।

इतनी सिमरन सेवा भगती करदिया होया भी किसे गल का हंकार नहीं करना। ये नहीं मन में लियाना भाई मैनू तो गुरु जरूर तारे ही गा ना, भावे किसी होर नू तारे ना तारे। नहीं, साडे जपा तपा नाल नहीं गल मुकनी। हे निरंकार तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है। ये अरदास करन दे ही सानू गुरु ने प्रेरणा दिती है। बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक दी अंश बंश जो हर एक शहरां विच जाके गुरु घर का प्रचार करया करदे सन, और बड़ा लश्कर सी, बड़ी मानता सी इना दी, हाथी घोड़े रथ होर बेअंत संगतां ने होना, ते जिस शहर जाना उन्हां ने दो दो चार चार मील अगों ही चौंकियां करदियां कीर्तन करदियां लैके आउणा। इतना अदब सत्कार होंदा सी, वड्डियां कमाइयां वाले सन बाबा साहब सिंह जी। जदों चंग मिखियाने आए साडे शहर विच, बजुर्गां ने बचन सुनाया, चंग मिखियाने आए, कितनियां संगतां आके जुड़दियां सी, ते एक कलंदर रिश लैके आ गया। बाबा जी अगे आके नमस्कार कीती, ते रिश नूं कहण लगा तुम्हें मत्था टेक, ए वड्डे घर हन, वड्डे घर दे बच्चे हन, गुरु नानक दे बच्चे हन, इत्थों वड्डियां बख्शीशां मिलनगियां, वड्डियां दातां मिलनगियां। क्योंकि रिश नूं समझाया होया सी, ते रिश ने भी मत्था टेकिया बाबा साहब सिंह बेदी जी दे अगे, इत्थों वड्डियां दातां मिलनियां हन। ता बाबा जी कहन लगे फिर वड्डी दात देईए। हां महाराज देओ। ते बाबा साहब सिंह जी ने अपने मुंशी नूं कहा कि जा 32 रुपये नौआं ने जाके खजाने विचों ले आ, ते इस कलंदर नूं दे दे। जितने पैसे हजूर ने हुक्म कीते आके कलंदर दी चोली विच पा दिते। बड़ा खुश होया भाई, बड़े बड़े घर वेखे हन, कोई 54, कोई 98, कोई रुपया, कोई वड्डा होएगा जिसने 5 रुपये दिते होंगे, पर 32 रुपये नौ आने, एडी वड्डी बख्शीश। बाबा साहब सिंह जी कहन लगे कलंदर नूं, भाई चंगी तरह ये पैसे गिन लै, ये 32 रुपये नौ आने हन, तू क्या सी ना रिश नूं भाई वड्डियां बख्शिशां मिलदियां हन। हां महाराज, तुसी दित्ती वड्डी बख्शिश है। ओ अपने आप नूं, ओ 32 रुपया नूं वड्डी बख्शिश समझ रहा। ते बाबा जी कहन लगे हुण रिश दे गल विचों रस्सा खोल दे, महाराज ये भज जाएगा ते फिर हाथी नहीं आउणा। कहन लगे हुण ये भजन जोगा कित्थे रह गया है, हुण ये किते नहीं जा सकदा, हुण इहदा अंत समा नेड़े है। जो तेरा इसका हिसाब सी ना वह पूरा हो गया, तू भावे पैसा पैसा करके कट्ठा करके 32 रुपये नौ आने तू इहदे कोलों कर्जा लैणा सी, तैनू कट्ठा दे दिता है, ते ए हुण गुरु नानक दे दर ते आ गया, ए हुण बख्शिया गया। ए तेरे नाल रहिंदा तां पता नहीं केड़ियां जूनियां विच परमना सी, क्योंकि हुण गुरु नानक दे दर ते आके वड्डी बख्शिश मंगी है इसने, हुण ए गुरु नानक दे चरणां विच जाके विराजेगा। तो अनेक लोगां ने ए वचन सुने और वेखे कि उसे वेले रिश शरीर त्याग गया, ते उसकी रूह जो सी वह गुरु नानक दे चरणां विच जा विराजी। दया करो किस मेहर उपावो, गुरु नानक दे दर ते आके जेड़ा भी कोई भाई श्रद्धा दे नाल झुकदा है, गुनाह बख्शाउंदा है, फिर बख्शन विच देरी नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भी ये शब्द उचारण कीता साडे गुनाह बख्शाउण लई। ओ आप तां निरंकार सन, आप तां समर्थ पुरख सन, अनंत कला दे मालक सन।

ताश करनी है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, ते जे कुछ चला गया है ता हे निरंकार ए मेरे लिए चंगा नहीं होना, ताइया तू मोड़ दिया ना। उच्चारण करो श्री गुरु नानक दे घर विच हंकार नूं कोई थां नहीं, इत्थे वड्डे तो वड्डा पापी आके टै पवे बख्शन विच देरी नहीं, पर जेड़ा हंकार करदा कुछ बन के आउंदा गुरु नानक दे दर ते ओह कदे कुछ लै जा नहीं सकदा, सगों अपने पुन दे जांदा वंड जांदा। उचारण करो श्री इत्थे तां भाई ए अरदास करनी है, अपनी करनी कर नरक हूना पावो ठोर, ए निरंकार जे मेरियां करनियां ते जाओगे जे मेरे गुनाह वल तकोगे तां शायद मैनू नरक भी ना चल सकन। तुमरो बिरद को आशरो समार हो, तेरा बिरद है तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है, तेरियां रहमतां दा सदका ही असीं तर सकदे हां, इसलिए दया करो किस